0: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇଦେବ ଏଇ ଡର ନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଣୁଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ, ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସକାଳ 6ଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपस

0: जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय चतुर्दश ग्रैष्मिक सस्यानां एमएसपीति न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम् नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदम मूल्यम सुनिश्चितम भविष्यति इति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदञ्च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांक पर्यन्तं यूएई नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी यूएई अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन सह मिलिष्यति सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भविष्यति

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: हे फ्रेंड्स, म्यूजिकल योर आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आपण माने सुनिछंती। आज रे सकाळ रे आपणक साथी स्मृति जोडी जाईची आपण मानक पाखरे। सकाळ 17 बजे 26 मिनिट आई मीन 27 मिनिट ऑलरेडी हे गलाणी एंड ता साथे साथे आरंभ हे गलाणी सौ शुभ सकाळ। तो दोस्तों, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां, ये नया दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए।

0: तो इस सुहानी सुबह में आपके साथ आपकी हम सफर होस्ट स्मृति को आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए सफर का कारनामा शुरू करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।
1: अनजान गिफ्ट माइस बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं। चाहे जितने भी दूर रहें आप, पर अपने तो अपने ही होते हैं ना। यस।

और इसीलिए तो सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़ गए हैं एफएम रेनबो के प्लेटफॉर्म पर। सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। आज रही सुंदर सकाळ रे आपण का साथी स्मृति को आपण माने सुनी चंदी। सो सकाळ रे ई सुंदर समय रे आमे नै आसछु गोटे स्पेशल बर्थडे सिलेब स्पेशल जहाँ को आमे कहि परबा शुभ सकाळ कार्यक्रम रे। यस माय फ्रेंड्स, आज गोटे नुह दुईटा नुह तीनटा सिलेब कर आज हूँ हैप्पी वाला बर्थडे। सो आज आम कथा बॉलीवुड रा तीन जन अलग अलग रंगर तारका विषय अभिनय गंभीरता सौंदर्य नजाकत एवं परफॉर्मेंस रा शक्ति जो मैंने दर्शकों मनरे गोटे छाप छाड़ी। चलते ना आरंभ करवा से बर्थडे सिलेब स्पेशल को। सो सबुठ प्रथम कथा हवा हिंदी सिनेमा जगतर एक अभिनेत्री वहेदा रहमान विषय। सौंदर्य शालीनता क्या कहुए से जीवंत उदाहरण होहेदा रहमान गाइड पैसा कागज का फूल एमती बहुत गुड सुपरहिट फिल्म से अभिनय जादू देखते क्लासिक भाव गणाई आखिर भावना एवं सरल अभिनय दर्शकों हृदय को छुई था। से केवल जो अभिनेत्री नुह से गोटे जुगर परिचय आज हूँ हैप्पी वाला बर्थडे।

एक शालीन शालीनता अभिनय र परिचय वाहिदा रहमानको पाइ हिन्दी सिनेमा र गोल्डन एरा कथा कहिले वाहिदा रहमानको नाम निश्चय आसिब ताको अभिनयले थिला सरलता औ सेही सरलतारे से असाधारण आकर्षण निज भितरे साउँटिथिले फ्रेंड्स केवल डायलॉग कहुनथिले से आखिर भावना रे मनर कथा कहिदौथिले चलचित्र जगत रे तांकर आरंभ होइथिला दक्षिण भारतीय सिनेमारो किंतु परे बॉलीवुड रे प्रवेश करी से तांकर एमिति छाप छाडिले जे आजि मध्य सेई युग को गोल्डन एरा बोली कह जाउछि प्यासा फिल्म रे तांकर भूमिका लोकंक हृदय को जितिथिला आउ गाइड वर्तमान जोटा मु आपनको सुनैली सेथरे रोजी चरित्र त आजि मध्य भारतीय सिनेमा र सबुठारु शक्तिशाली नारी चरित्र मानक मध्य रे गणा जाइथाय एही समय रे एते साहसी स्वाधीन चरित्र को एते सुंदर भापरे पर्दारे आनी परिबा सहज कथा नुह किंतु वाहिदा से चरित्र को पूरा पूरी निक्षुण भापरे गाइड चलचित्र रे देखै चंती औ वाहिदांक कथा आसिबो डांस कथा आसिबनी क्लासिकल नृत्य रो अपूर्व अभिव्यक्ति तांकर परफॉर्मेंस को आउरी अधिक मनमुग्धकर करि दउतला तांक हसरे थिला शांति औ तांक अभिनय रे थिला एक अजणा माया से निज समय रे केवल ग्लैमर्स नुह टैलेंट को मध्य समान गुरुत्व दउथिले औ सेति पई आजि मध्य नुवा पीढ़ी रा अनेक अभिनेत्री तांको निजर इंस्पिरेशन बोली मानंती तांकर सिनेमा देखले लागे सतरे अभिनय क कला आ वाहिदा रहमान से कला रो जने सुंदर शिल्पी

क्या बात है, तीसरी कसम का ये ब्यूटीफुल सा गाना अभी भी जब भी हम लोग सुनते हैं ना, तब भी मतलब जैसे नया सुनने का मन कर रहा है और भी सुनने का मन कर रहा है। क्यों वही था रेवान का कथा यार, एमती गोटे सेगमेंट रहता जवाबी सॉरी वानी गोटे जुगर कथा। सो आज सिलेब स्पेशल बर्थडे स्पेशल रे आज आम सेलिब्रेट कर एफएम रेनबो रे तीनोटी जो बॉलीवुड रो कलाकार मानक कथा। तबे वर्तमान आम जहां कथा हवा से होंगे बॉलीवुड रो ग्लैमरस कॉन्फिडेंट अभिनेत्री जरीन खान का विषय। वीर फिल्म रो तांकर डेब्यू स्टार्ट हेतिला आ परे निजरा स्टाइल एवं पर्सनालिटी द्वारा से दर्शकों मनरे तांकर गोटे अलग नियारा जगह सृष्टि करथिले। एंड यस फिटनेस जर्नी कथा जरीन खान का कथा उठिबो एवं फिटनेस कथा उठिबनी केमिति हबो फिटनेस जर्नी हो कि कॉन्फिडेंस हो जरीन अनेक युवा पीढ़ी को पाई गोटे मोटिवेशन तंकर स्क्रीन प्रोजेक्ट सबुबले स्क्रीन प्रेजेंट सबुबले थाए एकदम एनर्जेटिक एंड स्टाइलिश। शिविर फिल्म रो सही ब्यूटीफुल ट्रक जो थे जरीन माशाल्लाह क्या दिखती थी।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 8:00 अमर परवर्ती कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली रु सुनी परिबे किछि समय मध्य रे
1: प्रसार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रु
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय जिलापन नवाचार सहयोग के बाद वैश्विक शासन
4: और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
6: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
7: The UAE is an important partner.
8: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
7: MMTPA LNG to India।
6: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार

0: करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
3: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
6: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
7: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से

0: बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रही हैं उस पर स्वयं अमल कर रही हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े।

0: दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर। सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार, सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce a uniform civil code bill in State Assembly on 26th of this month. India banned export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shehrzad Pongkatkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato' Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified,

0: नमस्कार सुनीता, केमिती अछ? आउ आजी एठी केमिती?
1: नमस्कार दीदी, आजी मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: କଳା ମେଘ ଦେଖି ଜମା ଡର ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ଧାର କାଲି ଆଲୁଅ ହେବ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ ଯେତେ, ହସି ହସି ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ କାହା ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏଇ ତ ଜୀବନର ମୂଲ।
4: हे फ्रेंड्स, सुनी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। एंड आज रही सकाळ को मोर एनर्जेटिक करबा पई आपनका हम सफर हो स्मृति जोड़ी ही जाई छी। आज रे सकाळ रे आपन मनन का सहित एंड समय वर्तमान 8:32 बजी 32 मिनट ऑलरेडी हे गलाणी। सो चलन तो मॉर्निंग को आउटी के मेलोडियस करबा। मॉर्निंग मेलोडी सो आसी पहुंची गलाणी एंड ए मेलोडियस मॉर्निंग रे सुनिबा के छी मेलोडियस गीता।

और जब प्यार होता है पहली बार, तब दिल तो पूरा पूरी गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये जो पहली प्यार होता है ना, ये कभी भी मन से जाता नहीं है। ट्यून करी चदिया का स्वाणी एफएम रेनबो गेट 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान सकाळ 8:51 आपणक साथी स्मृति को शुणी आज रही सुंदर सकाळ रे सो चली मॉर्निंग मेलोडी। तो सकाळ हेला माने आमे समस्ते टिके टिके हेल्थ कॉन्शियस हो जाउ एंड सेति पई डाइट रो ख्याल रखी थाउ, जिम जाई थाउ, वर्कआउट करी थाउ एंड समस्ते सुंदर फिट देखा जीवा पई काहे की बा न चाहिबे। समस्ते सुंदर देखा गले केही जदि जदि सामनारु जणे के प्रशंसा करंती ताले ओबवियसली निहाती भाबरे दिल को सुकून मिलता है, भल लागी थाय जे जा हो परिश्रमटी सफल हला। एंड सेथिपाई आपण माने जेते व्यस्तता भितरे थांतु ना काहेकि सकाळ सकाळ टिके टिके सी डाइट रिलेटेड हो आपणकर वर्कआउट रिलेटेड हो निजर फिटनेस रा ध्यान त निहाती भाव रखी थांती। सो सेथिपाई आपणकर एफएम रेनबो रे मध्य आपणको सेही भली भाबरे फिटनेस रिलेटेड आई मीन आपणकर हेल्थ रिलेटेड किछि कथा स्मृति सबुदिन कहि थाए। एंड आजि आमे बैक पेन विषय कथा होचु जोटा कि गोटे वर्तमान कॉमन प्रॉब्लम ए बैक पेन टी। सेथि पाई जदि बैक पेन आपण भोगुचंती बा बैक पेन रो मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती, पिठी जंत्रणा रो मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती, किछटा खाद्य अछि जोटा कि आपणक डाइट रो आपणको माइनस करबा पई पड़िबो। किसी कथा कहली आपणको आउ ता सहित आपणको ऑयली फूड जोटा रही से सब जिनस भी माइनस करिवाकू पड़िबो, जेमती कि अत्यधिक तेलयुक्त खाद्य खाइबा आपणको हेल्थ पई भी एमितरे भी बहुत जमा भी भलो नहो, चर्बी वृद्धि हेथाय एंड जमा हेतिबा चर्बी मेरुदंड उपरे तार चाप पकेय थाय जहा द्वारा कि जंत्रणा वृद्धि हे पारे। सो अत्यधिक तेलयुक्त खाद्य बदल रे आपण स्टीम फूड खाई परिबे बा जदि सैलो फ्राई हेछि ताकू मध्य आपण से प्रकार फ्राई जिनिस मध्ये आपण खाई परिबे। जदि आपण नॉन वेज खाउछंती देन पैकेट मीट बा रेड मीट सैचुरेटेड फैट अधिक थाए जोटा कि मेरुदंडर डिस्क पई क्षतिकारक, प्रचुर परिमाण रे प्रक्रिया युक्त जोटा प्रोसेस

यस माय फ्रेंड्स सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक अपनों का साथी स्मृति को आज रही ब्यूटीफुल मॉर्निंग ड्रेस सुन चंदी सो चली ची डायल इन लाइव चिट चैट एंड अपनों माने लाइव कथा हो चंदी मौस सहित 0671-2303-153 ए नंबर रे एंड आज ही स्मृति पचारु ची अपनों मानों कुछ सेविंग करिया को केते भला पांती एंड आज जाए कौन सब सेविंग करी चंदी कौन उपकृत है चंदी ता द्वारा देखिए जो कॉलर आसगले कि अच्छा।

0: हाँ जा हो पिला माने ये तमे तो सब कथा आगुरु बुझी सारिच ई खरा छुट्टी रे निजो घर को विद्यालय भाभी समय को अपचय न करी केमिति पाठ पढिबो आगु को बढिबो आउ आमो भारत माता रो ना रखिबो हेले पिला माने सबुठ बड खुशी रो कथा आनंद रो कथा कोन कहिलो जानिच एमिति गोटे सुंदर कार्यक्रम टिए प्रस्तुत करी प्रति सप्ताह रे थरटिए माने स्कूल छुट्टी समय रे तमे जेतेबेले घरे व्हाट्सएप रे ऑनलाइन रे पाठ पढुच हेले केमिति मन देई पढिबो पाठ रे तमरो मन लागिबो सेहित पई कथा पढु पढु तम मानक लागि चिंता करथिले भारत मसाला रा कैप्टन तथा कंपनी रो परिचालना निर्देशक महोदय श्रीजुक्त सुशांत कुमार पंडा दिने मते पाखू डाकी एई भारटा मोरी मुंडो उपरे रदि देले पिला माने भलो हैला मु भी प्रति सप्ताह रे तम मानक सहित टिके मन खोली कथा होवार सुजोग पाइबी हेले पिला माने एई कार्यक्रम रे तमे माने जहा जहा कथा सब सुनिबो टिके मन देकी सुनिबो कारण कार्यक्रम शेष रे आमो भारत मसाला स्कूल टाइम तरफरु तम मानक रहिछि प्रश्न टिए हां तुम बापा मा परिवार वर्ग मध्य धीरे धीरे आमर एई कार्यक्रम रे भाग नेबे तुम विद्यालय रो शिक्षक शिक्षयत्री माने तुमरो एई पाठ पढा विषय को नै निजरो मतामत भी रखिबे ता छडा सरकारी ऑफिसर महोदय माने तम मानकु एई खरा छुट्टी को तम माने घरे केमिति काटिबो से बाबद रे निजरो मूल्यवान कथा मान रखिबे तेनु तम माने मन देकी कार्यक्रम सुनिबो आउ आमो प्रश्न रो सठिक उत्तर देई भाग्यशाली विजेता भाबरे पुरस्कृत मध्य हेबो ताहले चालरे पिले एई कार्यक्रम संपर्क रे आजिर प्रथम अध्याय रे भारत मसाला रो परिचालना निर्देशक श्रीजुक्त सुशांत कुमार पंडा महोदय तम मानकु तथा आजिर दिन रे आमुकु सुनुथिबा आमर प्रिय श्रोता बंधु मानकु की कथा सब कहउचंती
1: ए अवसर मोर पिला मानकु कहिबी ए जो समय टाकु तम माने बिल्कुल अपव्यय करो नहीं ए समय रे तुमे माने जेमती स्कूल रे पाठ पढुतलो सेई भली व्हाट्सएप ऑनलाइन रे पाठ पढ ता सहित तम माने देशर होउछ आगामी भारतर संतान सबु

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

पहली बार जब महसूस हुआ तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तब से हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम लिखा है। क्यों, ऐसा ही होता है ना जब प्यार दिल को छूता है। सुनी चाहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो कैटक 100.4 दिल से दिल तक आपणक साथी स्मृति को आज सुंदर सकाळ रे सुनी चाहिए। समय वर्तमान सकाळ 9:51 बजे 51 मिनिट ऑलरेडी हे गलणी। सोईटी कहि रखु जो सकाळ 10:11 आपण मानकर लव लेटर्स पढ़ीबार टाइम माने आपण मानकर अनुरोध रो गीत को प्ले करबा टाइम जो माने आमको रिक्वेस्ट ऑलरेडी करी सारिलेनी। बहुत सारा लव लेटर्स वर्तमान मो कंप्यूटर स्क्रीन रे व्हाट्सएप पेज रे सो आपण मानकर अनुरोध रो गीत निहाती प्ले करबी। 10:11 आम सहित रही थांतु आमको सुनथांतु एमती।

ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଗୀତ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କାଟାକରି। ୟେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। पहली दफा ये एहसास हुआ कोई इतना खास भी हो सकता है जो दिल के इतना करीब आ जाए कि हर दुआ में वही शामिल हो जाए। तो ये तो दिल की बातें हैं, और ये जो दिल की बातें होती है ये सिर्फ एफएम रेनबो कटक में ही होती है, क्योंकि हमारा टैगलाइन भी है दिल से दिल तक। तो दोस्तों, आप लोग हमको सुन रहे हैं उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा के बाहर भी बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़, आसाम, ये सब राज्यों से भी हमको सुन रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं। सो एफएम रेनबो कटक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए। सो बहुत सारा लव लेटर्स अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो चलिए, सो शुरू हो चुका है रेनबो एसएमएस का, आप लोगों का, फरमाइशों का, गानों का सफर। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला एसएमएस हमसे जुड़े हुए हैं अब्बास सेन, रोहित सेन, अमित सेन, दीपक कुमार, राजकुमार भरद्वाज, विमल श्रीवास्तव, मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट से। सात रंग के सपने आती है तो चल ये गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्मृति मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ। टाटा स्टील परिवार तरफ रू ओडिशा वासिंग को प्यार भरा नमस्कार। ओके, सो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना।

0: ओके ओके ओके बहुत सारा आम सहित लिसनर्स मैंने धीरे धीरे जोड़ी ही जाऊंगी दस टा सात अलरेडी हेगलाणी यार गोटे घंटा भितर एत सारा समस्त रिक्वेस्ट गीत केमी प्ले करी से भाविपारूनी बट स्मृति ट्राए कर ओके सो आम सहित कल्पना मोहंती सोम प्रकाश भारत चंद्र नायक सीडीए सेक्टर सिक्स कटक रू आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय जगन्नाथ एंड अलग अलग हिंदी फिल्म का गाना कुछ हमको तुमसे ये गाना सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में तो चलिए दोस्तों पहुंचाते हैं आपको अपनी आपके पसंदीदा ये सुंदर सा गाना
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

सुनी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव नुहे रेनबो एसएमएस ओके सो 10:10 ऑलरेडी हेगलानी एफएम रेनबो कटक रे सो नेक्स्ट एसएमएस को पढ़िबा नेक्स्ट व्हाट्सएप को हम सहित कनेक्ट हे छंती मोंटू सर जिगरण पटामुंडई केंद्रापड़ा रु सोमनाथ साहू मोंटू सर जिगरण पट्टामुंडई केन्द्रापड़ा लिखले नमस्कार एंड जय जगन्नाथ टू आवर ऑसम आरजे स्मृति मैम मैम आपणकर एंकरिंग करथिबा मॉर्निंग ट्रांसमिशन रे समस्त प्रोग्राम बेस शिक्षणीय एंड मा एंड मन छुआ हे परिचे सेति पई आपणको सबबळे हृदय रु धन्यवाद एंड शुभ अभिनंदन थैंक यू सो मच सोमनाथ भाई God bless फॉर एवर ओके सो सुनिया पई चाहे छथि तपस्या ओडिया चलचित्र गीत झुली झुली खेले दोड़ी बहुत ही सुंदर गीत टी अनुरोध करी छथि बाणी जयराम को कंठरु एही ब्यूटीफुल ट्रैक टी तपस्या मूवी रा चलंत सुनौ छी आपन को

सो माय फ्रेंड्स सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 10:19 स्मृति को सुनिश्चित आज रे सुंदर सकाळ रे मु पढुची आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर्स व्हाट्सएप रे आपण माने पठाई चंदी आपण को अनुरोध रो गीत आम सहित कनेक्ट हे चंदी रोहित मेहर बुडापाली विजयपुर बरगढ़ रु सुनिया पई चाहि चंदी ओ माय लव फिल्म रो गीत

ओके क्या बात है, मतलब इसके बाद भी जो मूवी का रिक्वेस्ट आया है वही एक दूजे के लिए मूवी का ही गाना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आम सहित कनेक्ट होती प्रमोद कुमार साहू डीह साई कादोपदा जगत सिंहपुर अनुरोध कर सुंदर गीत टी।

सो मैं फ्रेंड्स सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाल 10:33 सो चली रेनबो एसएमएस आपर अनुरोध रही कार्यक्रम स्मृति रही आज सुंदर सकाल पाखे सो देखा नेक्स्ट एसएमएस आमको किए कर कनेक्ट प्रफुल्ल ओके निर्मला बेहरा संतोष बेहरा नातुणी आद्याशा कांतो लाठगढ़ लिखले जय श्री राधेराधे सुंदर उपस्थापना दीदी अशेष अशेष धन्यवाद आगक आसुची सावित्री व्रत।

तो दोस्तों हमसे उड़ीसा के बाहर से भी बहुत सारे श्रोताएं सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं और हमको मैसेज करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। दत्तरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा सुनना चाहते हैं हिना फिल्म का गाना बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया ये गाना। और लिख रहे हैं जय जगन्नाथ जी, प्रिया आरजे स्मृति मैम जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दिल को छू लेता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से थैंक यू जी। ओके थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। पहुंच रहा है आपका पसंदीदा ये सुंदर सा गाना आपके पास।

ओके सो समय सरी सरी जाऊछि रेनबो एसएमएस शो रे वर्तमान आउ मात्र गोटे दुईटी गीत ही मु प्ले करै परबी आम सहित कनेक्ट हेछन्दी उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु लेखले स्मृति अपा नमस्कार सब स्टाफ मानको नमस्कार सब श्रोता मानको गुड मॉर्निंग एंड गीत सुनिया पई चाहिछन्दी बंदिश फिल्म रो रंग भरे मौसम से किशोर कुमार जी की आवाज में उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु

ना सुन के तो एफएम रेनबो में पूरा एफएम रेनबो भी पूरा रंगीन हो गया है। वैसे तो एफएम रेनबो हमेशा रंगीन रहता है क्योंकि ये टाइटल ही है रेनबो। सुनी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान 10:55। वर्तमान रेनबो एसएमएस शो को तो सारिबा को पड़ियो तबे एही गीतरो ही शेष करिबा। आम सहित कनेक्ट हे छंती कुनी एंड ऐसा पुरुणा साही केउंझर खजूरी जुआणी आम सहित कनेक्ट होती लिखले हाय गुड मॉर्निंग मैम हिंदी सॉन्ग प्रेम रतन धन पायो क्या बात है यही गीत को शुणा अनुरोध करे पहुंचु यही सुंदर गीत कुनी आशा पाखक शुणु था एफएम रेनबो को एमती एंड स्मृति को यही दिंतु विदाय कारण परवर्त आर्जे आ कि समय पर आपण सहित एंटरटेन करेंगे आपण सहित कनेक्ट हो दिन शुभमय हो स्मृति को यही विदाय दिंतु।

हेलो भाई नमस्कार गुड मॉर्निंग ट्यून करछन्दि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दलसा दल तक सुजाता अछि आपण मानक सहित दिन सारा रहिबो जानि छी आपण माने बहुत व्यस्त होइ छबनी आपण को माइंड को फ्रेश करिया पई कारण वर्कलोड भितर समस्त भी रहुथिबे निश्चय दिन सारा मीठा मीठा गीत सुनेबो मीठा मीठा कथा हवा मीठा मीठा मत मध्य मागिबी किंतु वर्तमान समय दिन 11:00 बाजी सारी समय हो जाए आपण फेवरेट शो कलाकार रा।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछो असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

साथी करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकटक दल से दिल तक सजले किछि कथा किछि गीत। हाँ साथी, स्मृति संगीत को अर्थ देई थाए। जदि कौनसी गीत सहित आमर व्यक्तिगत अनुभव जड़ित थाए ना, सही गीत आम पई विशेष हो जाए थाए। अन्य लोकों पई से गीत साधारण हो पारे, किंतु जहांका स्मृति रे सेथिरे गढ़ित ना, सेमानक पई से गीत अमूल्य धन परी। जेमिति कि स्कूल टाइम रे विदाय बेले समारोह रे गीत वर्ष धरी मन को छुई थाए। जो गीत शुणिले आमे पुणी से श्रेणी कक्ष रे फेरी जाऊ बोली लागे, माने आमे पुणी से स्कूल दुनिया को चली जाई थाऊ।

वेलकम ब्याक ओन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली किछि कथा किछि गीत हाँ साथी समाज और संस्कृति रे मध्य संगीत और स्मृति रा गभीर संपर्क देखा जाए जेमिति कि पर्व पर्वाणी विवाह अन्यान्य अनुष्ठान रे गाइथिबा पारंपरिक गीत माने आम संस्कृति रा स्मृति को जीवंत रखी थांती जे गीत गुड़िक पीढ़ी रो पीढ़ी को स्मृति रो सेतु गढ़ी थाए आज आम लोकगीत सुनचे से गुड़िक आम पूर्वज माने जीवन रे एक अनुभव लुचि थाए सतरे साथी स्मृति और संगीतर संपर्क केवल व्यक्तिगत नुहे यह सामूहिक मध्य जातीय संगीत किंबा देशभक्ति गीत शुणिले आमर मनरे देशप्रेम और ऐतिहासिक स्मृति जाग्रत हुए एक साधारण सुर समग्र जाति को एकत्र करिपारे स्मृति और संगीत हेउछि जीवनर दुईटी विभिन्न अंश स्मृति बिना जीवन निर्जीव और संगीत बिना जीवन नीरस

0: साथी समय तो इशारा देलाणी शेष करुचु किछि कथा किछि गीतर कार्यक्रम को वर्तमान सुनंतु हिंदी एवं परे परे इंग्रजी रे संवाद रिले करी प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली रु।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
3: In strengthening cooperation against terrorism.

डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रूपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तेबे साथी या भितरे आम पाखरे आउ जने श्रोतांकर मध्य मेसेज टी आसी पहुंची जाइछि। से लेखिछन्ती सुजाता अपा गुड आफ्टरनून नमस्कार जय जगन्नाथ आपणको मध्य वेरी गुड आफ्टरनून आम तरफ प्रति नमस्कार। लेखिछन्ती टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिसा वासी को प्यार भरा नमस्कार जणै दउछि आपणकर प्यार भरा नमस्कार समस्त ओडिसा वासी को। लेखिछन्ती मनीष जीवन विश्वास हेउछि एक मंत्र भरोसा जेमिति निज उपरे प्रथमे विश्वास भरोसा थिबा दरकार जहा सबु लोकंक सबु लोक समाज रे समान नुहन्ते प्रथमे लोकंकर चाली चलनी देखि आमे तांक उपरे भरोसा करि पारिबा। जदि किछि संदेह हेउछि से जगरे आमे विश्वास रु दूरेइ देबा दरकार सबु लोक समान नुहन्ते। लेखिछन्ती अपा आमे नन ओडिया ओडियारे भल भावे लेखि पारुनो ठीक करि पढ़िबा निश्चिंत ठीक करि पढ़िबे। तापर लेखिछन्ती अपा आम टाटा प्लांट को केबे बुलिबाकु आसंतु निश्चिंत समय बाहर करि केतबळे जीवि बुलिबा पई। परे लेखिछन्ती आमे ऑफिस रे 37 जना स्टाफ एकाठी होई आपणको प्रोग्राम सुनुछु। मेसेज करछन्ती आभा सेन राजकुमार भरद्वाज बिमल श्रीवास्तव टाटा स्टील प्लांट आपणकर सुंदर मतामतटी पई आपणको बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे साथी समय सरी सरी आसछि आपणकर मतामत निश्चिंत जणांदो सेतबेले जेंगे सुणी दिछु गोटे सुंदर गीत जोड़ी ही रहितन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहता।

0: Government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the U.S. to be partners, not rivals. In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision, SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास।

0: के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग

0: आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट यायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: अरे कविता, भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in कु जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार।

सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते थे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी

0: सृष्टि ने हमें सिखाया है। यदि नफरत करने वाले नफरत का काम बन गए।
1: वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचाली ची मोदी सा। हाँ साथी, जन्मभूमि केवल गोटे भौगोलिक स्थान नुहे, यहाँ आमर अस्तित्व यही भूमि आमको नाम परिचय गौरव दे था। जदि आम निज जन्मभूमि को भल पाइबा और तार उन्नति पाई आम काम करिबा तेबे देश उन्नति पथरे आगक बढ़िबा।

साथी ट्यून करछन्दि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चलेछि मो देश। हाँ साथी एठु विदाय नौछि सुजाता ए जंके मोर थिला जर्नी किंतु आपणको एका करि जाउ नै या परे परे आउ जणे आरजे आपणको सहित जोडी हेबे जीवा पूर्वरु एतिकी कहिबी सबुबले खुसी रे रहथांतु हसुथांतु ओ अन्यर हस पछर गुटी कारण सजुथांतु रहुछि नमस्कार।

हे फ्रेंड्स, ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आपण मानक सहित जोड़ी ही जाइछि आपण को रेनबो साथी नारे नाउ समय भी जाइछि आ परफेक्ट समय आपण को समय माने सोरिला आफ्टरनून रो ए सुंदर अपराह्न को आपण मानक को बहुत बहुत स्वागत।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
4: सधिटून कहते 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक रे बर्तमान सोरिला आफ्टरनून रे आमे कथा होती जीवन रो स्वर संपर्क रे। जीवन रे सबुबले खुशी रहनी केबे केबे दुखर कला बादल मध्य घटी आसे जीवन आकाश रे। विरह आउ दुखर स्वर खूब कष्टदायक होता है। क्या हरबार जंत्रणा किंबा आशाभंग होबार पीड़ा आमको भितर भांगी दिए। किंतु मन रखत बंधु, अंधार पर ही आलुआ आसे। लुह मध्य जीवन रो गोटे अंश, यह आम हृदय को सफा कर दिए आउ आमको अधिक शक्तिशाली करे। दुखर समय ही आम

0: मनसे रक्त चर्मरे ढंकुनी
1: अच्छा
0: इधर राइट ना भाई
1: निहाती निहाती सत कथा कहि छेंती
0: ताले ता भीतर हमें कोन दिनस को इश्यू करबा जे के शुरू कर रे टिके ये हो जीव तनो ज्ञान रे आलोक टिके जदि आसी जीव मन रे शेष शेष बुरु माने आसक्ति कमे जीव
1: प्रशांत बेल बेल जीवनटा ना माने कोंतनी बुझ होई जे नो की बेल बेल जीवनटा बहुत
0: कहबी आप सत्संगे की नहीं हमें जो नित्य नहाते है ना पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं अगर यदि आपन का उच्चारण आचरण सत्यता शुद्धता पवित्रता अच्छी तेलो आप कौट भी हार मानवे ना परिष्कार जल रहा आगुर थिला एबे अच्छी आउ आगु को भी रही दुनिया रे कोण अनुकोण रे
1: निहति मनुष्यर टेस्ट टिके सबले टिके डिफरेंट चाहे आपण अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आपण तो एते बढ़िया कथा कहउछंती शरीर पई एसबुर आवश्यकता नाही खटा फटार आवश्यकता नाही बा टेस्टीर किछ आवश्यकता नाही
0: आपण सहित के जोगाजोग हे गेला अनेक दिन परे एटा बहुत खुशी लागले भाई
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपण को जीवा पूर्व खाली गोटी कथा कहि दंतु
0: नमस्कार रहिले
1: नमस्कार नमस्कार ओ प्रशांत बाबू पूरा माने एकदम करमंडल एक्सप्रेस बड़े पूरा व्यस्त अच्छा तथा चेष्टा कर दुईपद कथा किंतु गोटे जिन अफसोस रही खटा पसंद करती ना मीठा पसंद करती जाणी ओके नेक्स्ट कॉल नवा किए अच्छा देखा हेलो
2: हेलो भाई नमस्कार
1: नमस्कार किए कौन
2: महांती
1: कल्पना मैडम कहते केमती अच्छा
2: कल आसे बहुत भल लगुता आज भी आपल लगे
1: आप सब लकी
2: बहुत लकी
1: आप सब लकी क्या बहुत भाई भौणी मैंने कहते जे आम फोन लगुनि बट गला काली आप लगी आप आज भी लगेदे बहुत बहुत खुशी लगे बहुत खुशी लगे कल्पना भौणी कौन कहे आपण तो विशेषकर मत लगुच तो निश्चित भाव मैंने गुपचुप को बेसी पसंद कर सब फ्रेंड्स मान शुणुंट तार सब इम्पोर्टेंट कौटा मान टेस्ट मान जो गुपचुप को बेस टेस्टफुल कै कौटा
2: टेस्ट कैसे कौन भाई जो तक मटर पड़ो सीझा मटर तर बादाम पड़ो
1: पुदीना पत्र
2: धनिया
1: पत्र मुख्य घर समस्त गुपचुप खाइबाक गुपचुप भल पाती विशेष कर खटा को भल पाती नो कि अच्छा मीठा मीठा भल पाती
2: मीठा मु बहुत भल पाए मीठा मीठा मु बहुत खाए
1: जदी मीठा और खटा दुईटा को रखा जीव कोटा को बेसी भल पाइबे ओके बहुत बढ़िया आपण को कथा जणा पडुची आपण बहुत मीठा को पसंद करंती तथापि गुपचुप एते बढ़िया करछंती बहुत भल लागिला बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना मैडम हमको फोन करे
2: नमस्कार
1: साथी आगो को चर्चा आपण मानन सहित जारी रहइबो किंतु चलंत बर्तमान सुने दुची गोटे मीठा गीत स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ साथी पुन थरे आपण मानक स्वागत ट्यून कर छथि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचल छि बटपान डायल इन लाइफ रे आपण मान पय गुडे सुंदर टॉपिक रही छि रास्ता कडर गुपचुप ना चाट कोटा बेसी आपण कर पसंद तो बटपान ना आवश्यक के छथि फोन लाइन रे देखिबा हेलो
1: हेलो
0: हेलो के कहू छथि
1: भाई तटा याथ हड तटा पर कहतिलु उसलता साहू
0: कहू छथि उषा भी गला का बोध फोन कर पचारिनी भावुची पूरा बिंदास रे कौन कह
1: झरना
0: झीर अच्छा झीरी को लेकिन पलि झरना बुलवा को अच्छा बाटरे अच्छा बाटरे से गुपचुप हो
1: गुपचुप
0: गुपचुप भल पाती ना चाट भल पाती

0: अच्छा मार्केट को ताले आपण जेते बळे जाउछंती ताले पंपड़ी चाट खाउछंती
1: आ गया
0: गुपचुप खाउनांती
1: खूब कम खाए
0: अच्छा माने आपण को मिसेस कोटा को बेस पसंद करंती
1: सेब जाय गुपचुप पखरा आगो छिडाई जीव आ कोन कहिबा
0: गे मार्केट को दुई जने जाइछंती ताले आपण को आपण सेठी 21 हि जउछे 21 हि जउछंती
1: हां जण करे पटे जाय खांती को खाइबे जे खाइबे मैडम खाइबे सब खाइबे समस्त जाई
0: कि आ कोन बस माने जण कर मुह से पटे आ जण कर मुह ए पटे नो कि माने गुपचुप पखरे जणे
1: तमे खाइसर तापर मोर इच्छा आले मु खाइबे
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत भल लगला बलराम बाबू कथा है कि बहुत भल लगला बहुत बहुत धन्यवाद आपनको
1: राधे राधे राधे राधे
0: ओके राधे राधे हां साथी रास्ता कडर गुपचुप ना चाट आपनको कोठा बेसी पसंद आउ जने कलर अछंती हेलो हेलो हेलो
2: नारायण सर नमस्कार
0: नमस्कार हेलो आपण सबळे खांती सबळे पार्सल नेके आसिते घर को
2: हम आनि जीवा से लोक तो किया सेती खियाय खाय उते मत अबला लागे
0: हां हां
2: जो सब गदाय है जे पिला सब ले ले वाला खाउते अरे मु तारू तारू किनी गिरी ओटा गाय गई मो घर को नै आई
0: अच्छा
2: यदि मु चाकी जा एबे जाय छी जो मु भुवन छ ने तुम मेरे जाय मु बड़ो जे रहू छी भुवन छ मु रहे भुवन छ से रसूल गड़ा जो मेन रोड कडे ने
0: गोटे कथा अच्छे बोध हुए परिचय तो दे ना राजेन्द्र नना बोध हुए कहते हेलो
2: तीन जिन भारी
0: रोड कडर भी किछ ने रोड कडर भी किछ तो मर्यादा रहबो ना हां
2: रोड कडर तो हम से तो थियाई जे जिंदा लोग खाइ दो यार पुला जरे गुटा गुटा तो तो ये सुवाया दिन से जे बोलले मु गुटे गुटे काटी इटा मन को लगो
0: सबुबले शरीर स्वास्थ्य को जदि जगिबा ताले केमती हबो मन को टिके भी माने हल्का फुल्का करबा को पड़िबो रास्ता कडरे बेले बेले गुपचुप चाट को खाइबा को पड़िबो काहेकि ना ये तो मन ना
2: रास्ता कडरे चाय खाले ते निजु खराब रामदेव बस कर को नना लोग जेउटा देखे को देखो मो इने ने पूजा लोग नना लोग ये ता कथा जेउना से चाय खाउ जेउटा खराब लागे खराब कथा
0: अच्छा ए बस रे आपण गुपचुप खाउ छंती पार्टी को खटका लगुनी दांत अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
2: आलुदम
0: बहुत बढ़िया जीवा पूर्व प्लीज आपचय देखी जातु राजेन्द्र नना कहते नुआगा कटक रु बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद साथी आपण भी कही पारे आम सहित जोड़ी पारे नंबर हूँ 0671-230-3153 टॉपिक हूँ रास्ता कडर गुपचुप ना चाट कोटा बेसी आपण को पसंद आउ जने कलर अच्छा हेलो
3: सर नमस्कार
0: किए कहते
3: सविता कहते जगतसिंहपुर
0: सविता कहते जगतसिंहपुर केमती अच्छा
3: आगे
0: केमिति अछंती
3: बहुत बढ़िया अछि आपण केमिति अछंती
0: मो तो एकदम बढ़िया अछि
3: हां आपण तो गुपचुप कथा मने पकाइ दउ छंती
0: गुपचुप कथा मने पकेला परे आपणकर सतरे कहले आपणकर इच्छा होजी वर्तमान गुपचुप खाइबा को
3: सर सुनंतु मो सत कथा कहउती मो कहलेले जे खाउछंती मो उपरे बिगिरबे जे व्यापार करछंती से भी मो उपरे बिगिरबे
0: अच्छा
3: तनो हां मो सत कथा
0: तम तम तम माने नेगेटिव कथा आपण कहबा को चाहउ छंती
3: निश्चय
0: ओके ओके
3: भारी
0: मन कौन
3: करता ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ଯୋଉ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ କପଡା ପୋଛିବାକୁ ହାତ, ସେଇଟାକୁ ପୋଛି ଦଉଥିବେ, ସେଇଠି ହାତକୁ ବୋଳି ଦଉଥିବେ, ସେଇ ହିଁ ଅସନା।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

0: ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।
1: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।
2: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
3: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
2: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
3: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
2: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

टर्न कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। सधैं स्वागत आपनको आजर इभनिङ अपडेट्स को।

साथी आज इवनिंग अपडेट्स रे आमे कथा बा जणे स्वतंत्र जणे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अभिनेता संपर्क आज हूँ जन्मदिन से सचिन खेड़ेकर हाँ 14 मे मान आज दिन में 1965 मसीह मुंबई में जन्मित सचिन निजर शालीन अभिनय पर आज सारा भारत में परिचित क्यारिययर टेलीविजन रु आरंभ होता किंतु इम्तिहान एवं सैलाब भली सीरियल घरे घरे लोकप्रिय कराइला परवर्त समय से मराठी हिंदी तेलुगु एवं तमिल चलचित्र निजर अभिनय जादू देखा तेरे ना सहित आप

सभी इवनिंग अपडेट्स को एडिस से सकरिबा ट्यून कर छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक हमारा परवर्ती कार्यक्रम ओडिया रे संवाद सुनि परिबे किछ क्षण मध्यरे।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागण रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in कु जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
4: ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक। सारी समय जी आजर मीठा मीठा गीतर कार्यक्रम गीतर मितर रे कार्यक्रम को आपन मन को बहुत बहुत स्वागत।

साथै धीरे धीरे समय मध्य बढ़ लगी कार्यक्रम को शेष कर समय मध्य आसिक पहुंची किंतु मु आपण मानको सरी भी कहिबी कहीं सरी एथिपाई आपणको कहिबी आपण मानको सहित मोर भी संपर्क आहुरी मधुर हो पारिबो जदि मो तरफ पर किछि भूल हेथाय ना कोन कहउछन्ती साथी सरी सरी आमे एथिपाई कहिबा आमे सरी अर्थ आपण सरी जाउ नाहंती कि आपण निजको बहुत माने न्यून भाव नाहंती सरी अर्थ आपणकर सेतिकी डिप्थ रहिछि सेतिपाई आपण सरी कहि पारछन्ती संपर्क अभिमान रहा स्वाभाविक किंतु से अभिमान को दूर करने सरी हूँ सबुठ गोटे बड़ मरम अनेक समय लोक मैंने भावती सरी कहले से छोटे कि प्रेम कहीं भी छोट बा बड़ न था जी नई जाए से ही प्रकृत प्रेम को बुझि जाए गोटे सुंदर संपर्क गढ़ापी बहुत वर्ष लगे कि भांगापी मात्र कई सेकेंड यथेष से समय सरी कहार साहस संपर्क को बचाए रखे मन रखत कौन सी चुक्ति तर्क आपणी हस ठार बड़ नुह जदि आपण गोटे छोट शब्द का मुहर हस आनी तेज से लजा कौन प्रेम निजक हजेदेव परस्पर भूल को क्षमा कर आगक बढ़ा ही प्रकृत जीवन।

0: ସମୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଗୀତରେ ମିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
4: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य

0: पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी

0: और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
1: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति

0: सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries, who called on Mr. Modi in New Delhi today.

हे फ्रेंड्स, ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। बहुत बहुत स्वागत आपण मानंकु आपणकर खास शो रेनबो एसएमएस को। रेनबो एसएमएस रे समय वर्तमान हो जाइछि। कहि रखबी जो माने चाहूछंती एफएम रेनबो एसएमएस रे समानकर मन पसंद गीत शुणा को आमको एसएमएस करेंगे। एसएमएस करने फर्स्ट टाइप करूँ एफ एम आर सी गोटे स्पेस देखी को फिल्म को आलबम गीत शुणा को चाहते तार ना लिखु गोटे स्पेस देखी गीतर फर्स्ट लाइन लिखु गोटे स्पेस देखी आपंकर ना और आड्रेस सहित आम पाक पठ दिं 09495963210 एवं अफिसील ह्वाट्सअप नंबर 8895254200 नंबर रे।

सरसरीदेखि भयो दुईटी मेसेज बडा बम्बो सुपाई गाउँहरू देवेन्द्र तान्ति राकेश तान्ति प्रकाश तान्ति एवं साथी आपण शुणु चाहिँ लव स्टोरी चलचित्र जेकोसी भी गीत तेज आपको शुणी दौ लता मंगेशकर और अमित कुमार भयस गीतटी परवर्ती समय अच्छा अजित फ्रम बारंग्रु शुणा चाहते अंश चलचित्र गीत गाई अलका याग्निक कुमार सानू

0: साथी समय आज रेनबो एसएमएस कार्यक्रम को एटी रखा ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय बर्तन राति 11 बजे हिंदी रे संवाद रिली कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली रो किछ क्षण मध्य रे
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया।

0: एक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: आजिर शेष समाचार मुख्यांश सह मु सुभाष चंद्र शतपथी। भारतर अध्यक्षतारे नुआदिल्लीरे ब्रिक्स वैदेशिक मन्त्रीस्तरीय बैठक अनुष्ठित। ब्रिक्स बैठक अवसरले नुआदिल्लीरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रुष, इरान, दक्षिण आफ्रिका ओ ब्राजिलर वैदेशिक मन्त्रीमानक सह आलोचना करिछन्ति। प्रधानमन्त्रीको पञ्चराष्ट्रिय गस्त आसन्ताकालिठारु आरम्भ हेउछि। कंग्रेस विधायक भिडि सतीशन केरलर परवर्ती मुख्यमन्त्री हेबे। श्री सतीशन आजि राज्यपालङ्कठारे निजर दाबी उपस्थापन गरिछन्ति। ओडिशा समेत 16 राज्य ओ 3 केन्द्रशासित अञ्चलरे जुलाइ पहिलारु आरम्भ हेबो भोटर तालिकार स्वतन्त्र सघन संशोधन। राज्यरे आईन श्रृंखला स्थिति नै मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतारे बैठक अनुष्ठित। अपराधीको विरोधरे शून्य सहनशीलता नीति अपनाइबाकु गुरुत्व। पश्चिम एशिया परिस्थिति जोगु राज्यरे बीजेपी सरकारको 2 वर्ष पूर्तिकु निराडम्बर भाबे पालन करिबाकु मुख्यमन्त्रीको निष्पत्ति। झारसुगुडारु भुवनेश्वर हैदराबादकु आसन्ता 31 तारिखरु विमान सेवा आरम्भ हेबो एवं आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा होगा। नहीं राज्य समस्त जिला को भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सतर्क सूचना जारी करिछे। समाचार मुख्यांश आज पई एतिकरे शेष होला।

हेलो हाय नमस्कार आदाब सश्रीयकार स्टूडियो घंटा रे समय वर्तमान सकला 17 बजी 37 मिनिट 40 सेकंड रेडियो से पखरा आपन माने समस्त रेडियो पखरा आपन मान कर म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत आज के पहुंच जे जी जणे बापई आपन मान को गुड मॉर्निंग यस साथी आपन माने पूरा ठीक करछंती माहौल पूरा जमी सारिछि सकाळ रे धुन सहित वर्तमान स्टार्ट करबा शुभ सकाळ को समय इशारा देखि एई कथा को कहि सारिछि कौन नहीं कि आसी छि शुभ सकाळ रे पिटार रे आज मु आपन माननको पई आपनकर म्यूजिकल फ्रेंड विश्वजीत जतबेळे आसी छि किछि म्यूजिक रो धुन धड़ाका त निश्चय हबो किंतु ता पूर्वरु किछि एमिति कथा गुटे एमिति सुंदर दिग विषय आज आम आलोचना करवा जहां आम समस्त लाइफ रे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे एवं आम बेले बेले गोटे गोटे कथा को देखिक बहुत आश्चर्य हो जाऊचे ये जो जिनस अमुक लोक करते सुंदर भाव करते सहज भाव करापे रिजन केमती से करदे आम कहीं कथा को धरीनियंतु कई जन बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलुची धरीनियंतु कई जन स्टेज रे बसिक बहुत सुंदर गिटार प्ले कर सितार प्ले कर फ्लूट बजुची या फिर कई जन बहुत शीघ्र शीघ्र रोसे किसी गोटे काम कर दूसरी वा व्हाट एवर एनिथिंग इन दिस वर्ल्ड जो काम जी बहुत सिद्धस्थ ता काम जो बहुत सुंदर भाव में आप आखि आग को आसे आपन को लगे काश मु भी एमती कर पारती किंतु जदि आप चाहती कौन करने को पड़ा आपन को निरंतर प्रयास करने को पड़ा काम जहां भी हो दक्ष एवं सफल हाँ केतोटी कथा आम समस्त जानत होजात हो पालन करू से हूँ चेष्टा बा प्रयास ये चेष्टा बा प्रयास शक्ति आम कम को इत्ते सहज सरल सुंदर भाव करने सबुठ गुरुत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट अवदान दिए घरे भावि नियंत माँ मान रोष सहित जोड़ा कौन स्पेशल स्पीड भाव में कम होफिस कंप्यूटर में टाइप करुवा कोर्ट सामन से टाइपिंग करुवा से मनीषर कथा हो सांग मान हाथ स्पीड रु मोबाइल चैटिंग हो सबुठ प्राक्टिस आउताबी कंटिन्यूस भाव प्रैक्टिस तो समस्त करुछंती किछ ना किछ काम रो प्रैक्टिस समस्त नित्यदिन जीवन में करुछंती किंतु सेतरे केबे केबे हमें देखबा को पाउ जे गैप मेंटेन हो जाए आज कले पुणी सप्ताह पर हाँ कर तो ये जिनसटी आपको अवॉइड करके कंटिन्यूअसली जेकोसी कम को आम निरंतर भाव में प्रयास करवा बारंबार चेष्टा करवा तारी सहित जोड़ा प्रत्येक चैलेंजेस को आम भल भाव जाणी बुझा आ

आगको बढ़ी कामटिको भल भावरे सारिबा सेतिपई निरंतर प्रयास आम जीवन में बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं निरंतर प्रयास आमको अनेक जगह सफलतार शीर्ष को नहीं जाए। बस लगन से करना है और लक्के रहना है। जैसे लक्के रहते थे सुखविंदर सिंह और गाते थे पीच पीच भरे गाने, बहुत सुंदर सुंदर गाने। तले चालन तो ना स्टार्ट करूँगा सुखविंदर सिंह का दमदार वॉइस रे आज शुभ सकाळ को ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी तेरे नाम।

जादू जहां साधारण को असाधारण कर दे पारे। देखिने तो आज तो आम डिजिटल वर्ल्ड रे अछे टेक्नोलॉजी सहित पाद थापिके आगु बढ़ुचे तेमे निरंतर प्रयास गोटे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे देवी सोशियाल मीडिया प्लाटफर्म्स भल कंटेन्ट बारंबार अपलोड पर जितेबले आपनकु कोनोसी गोटे सफलतार स्वाद चाखिबाकु मिले बारंबार अपलोड बारंबार तापाई प्रमोशन निरंतर चेष्टा सेठी मध्य अनेक लोक मानन को सफल कर दिए बस लक्के रहना है हो जाता है यही फॉर्मूला सेठी मध्य सफल तबे से पाठ पढ़ारु आरंभ करी के एंटरटेनमेंट फील्ड हो स्पोर्ट्स तारु आरंभ करी सोशल वर्क हो बा ए सोसाइटी रो आम जीवन जे कोनसी स्पीयर रो कथा आपण कहंतु सेठी एई जो निरंतर प्रयास बा जारी रखिबार कथा ए फॉर्मूला निरंतर चेष्टा आमको बेटर करी करी चले आ दिन परे दिने गड़ी जाए आमको से निरंतर चेष्टार इम्पैक्ट से समय जना पड़ न थाए सत किंतु समय सहित जिते यार प्रभाव देखा जाए आम सफलता समय रे सेते बड़े बुझी हुए ए यात्रार सफलतार शेष द्वार पाखे पहुंची जिते बड़े पछुक बुलिक मनीष चाहे सेते बड़े ए निरंतर चेष्टा मान पिलर बा ए रास्ता अतिक्रम करके आसला बेले निरंतर चेष्टा मान जे केते आम हाथ को मजबूत करिछंती सेमानन को कथा सेते बेले पूछि हुए तबे निरंतर चेष्टा करथवा प्रत्येक लोकन को हमर सल्यूट एमति चेष्टा जारी रहो निश्चित भाबरे हिजो साथी आ जो माने टिके पछगुंचा देइचंदी जे कोनो सीजन पई बहाना करूचंदी सेमानन को अनुरोध जे आपण मध्ये निरंतर चेष्टा रे लागी पडंतु निश्चित भाबरे आपणकर काम भी देखबे हेइ जीव कारण ये सतरे गोटे जादूगरी।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हला कि?
0: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: वेलकम बैक टू इन करजन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंती दिल से दिल तक मो आछ अपन मानन का संगरे म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत स्टूडियो घंटे समय वर्तमान 8:31 तबे साथी वर्तमान समय इसर देखि कहिलानी स्टार्ट करबा को पड़िबो माने सुनबा को पड़िबो अपन मानन को अपन का फेवरेट प्रोग्राम मो पसंद। उपस्थापन रे अछंती जस्मिन प्रियदर्शिनी एवं नमिता मल्लिक, प्रयोजना दुर्गा माझी, वैषयिक सहायता सुभाषिष राजगुरु महापात्र। आरंभ करछु मो पसंद।
4: हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मु आपनकर साथी जैस्मिन स्वागत करूछि आपनकर आमर आम समस्तंकर प्रिय प्रोग्राम को जानो ना हला मो पसंद ओनली ऑन एआईआर एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे।
5: शुभ सकाळर शुभेच्छा शुभकामना आउ नमस्कार सहित मु नमिता आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे।
4: सतरे तुमर स्पर्शे पुलक बर्षे दुख मु सबु जाए धोई।
6: हे प्रिय अमृत झर तोते कोळे नी तोर नदी चिर समुद्र।

0: सुंदर सुंदर कविता पठाइथिबारु आपनकु धन्यवाद बंधु। हेलो मो पसंद।
1: हेलो नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: बहन जी मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ बहन जी, मजे में है। आप बताओ बहन जी कैसे हो?
0: ऐसे ही मजे में रहिए हमेशा, हम भी मजे में हैं।
1: बहुत अच्छी बात है जी, सभी को मजे में रहना चाहिए।
0: जरूर जरूर, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो बहन जी अभी सेवा मुक्त हूँ जी, बस आनंद लेते हैं जिंदगी का, रेडियो सुनते रहते हैं या मित्रों के पास बैठते हैं, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह भी देख लेते हैं, कोई समाचार पत्र पढ़ लेते हैं, ऐसे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, तो आप अवसर ले चुके हैं।
1: बहन जी मेरा अपना ही बिजनेस था, बस अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपने काम उन्होंने संभाल लिया। मैंने 45 साल केमिस्ट शॉप की, अब बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, बेटा भी और बहू भी हॉस्पिटल कर लिया, फिर मेरे को अब काम करने की कोई जरूरत नहीं।
0: आप तो आप मौज मस्ती में रहिए, बिल्कुल
1: बिल्कुल चिंता मुक्त रहते हैं, सारा दिन मौज में गुजारते।
0: बेटे बहू डॉक्टर है, कौन से डिपार्टमेंट में?
1: दोनों आई सर्जन है जी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं।
0: अच्छा,
1: और पूरी ओपीडी करते हैं, पूरा अपना हॉस्पिटल है उनका जी।
0: आपका

0: एक ही बेटा?
1: हाँ एक ही बेटा जी, एक बेटी है। बेटी चंडीगढ़ में शादीशुदा है और बेटा उधर पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में। दो बच्चे हैं जी और बेटी के भी दो बेटियां हैं।
0: नाना जी बन गए, दादाजी बन गए?
1: बिल्कुल बन गए जी।
0: बहुत अच्छा लगा सुन के आपका, हंसी सुन के और भी अच्छा लग रहा है हमको। आप इतना खुश रहते हैं, ऐसे ही खुश रहिए। और बता दीजिए हमको आज क्या गाना सुनना चाहते हैं मो पसंद से।
1: बहन जी एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, वैसे तो सैड सॉन्ग है पर फिर भी बड़ा अच्छा लगता है मेरे को।
0: बताइए कौन सा गाना।

0: आती ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे, मुझे साथ आने दे।
1: गाना तो बहुत अच्छा था और आप भी बहुत अच्छे से गाए हैं गाना, मगर आप ये सैड वाला संग क्यों चुन लिए?
0: बहन जी पता नहीं क्या बात है, सैड संग सुनने में भी उतना आनंद मिलता है जितना खुशी के गीत सुनने में आनंद नहीं मिलता। आनंद ही लेना चाहते हैं तो बेशक सैड सॉन्ग हो, और फिल्म में तो देखो कहानी के अनुसार सैड सॉन्ग भी होते हैं, वो अपना जगह रखते हैं, और जो लव सॉन्ग है वो अपनी जगह रखते हैं, पर सैड सॉन्ग में ज्यादा मजा।
1: तो फिर सुन लीजिए ये सुंदर सा गाना आपके पसंद की।
0: धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

वेलकम बैक अगेन सभी ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंद दिल से दिल तक स्टूडियो घंटे समय यही ऑलरेडी 9:03 तमने डायल इन लाइव चिटचैट को स्टार्ट करिवारा समय दे सारी घंटा घंटा हमको सदी आपण सहित आज डायल इन लाइफ चिटचाट रे मनोभरी कथा हवा कारण कथा हवा आज बहुत खास कारण आज टॉपिक ही बहुत खास आपणकर जीवन सहित आम समस्त जीवन सहित जोड़ा एमती गोटे टॉपिक एमती गोटे कथा।

नई सहित भल पाइबा को आहुरी अधिक बढ़ेबा किंतु वर्तमान आपण मुनको आउ गुटे सुंदर कथा कहे ए जो नईर प्रेम रे केवल जे आमे माने पड़ीसे ता नुहे अनेक समय रे आमर संस्कृति आमर सिनेमा आमर गीत कविता कथा गल्प उपन्यास साहित्य रे मध्य ए नई सहित अहेतुक भल पाइबा माने जोड़ी हे जाइचंती कवि माने विभोर हेइचंती नईर प्रेम रे आउ लेखिचंती अनेक कथा अनेक कविता अनेक गीत यही नई कूल चित्रित अनेक चित्र नई कूल गढ़ी उठी अनेक संपर्क आई कूल चलचित्र गुड़िकर अनेक सुंदर सुंदर गीत आर दृश्य गुड़िक स्थान पाई जहाँ आम हृदय सबुदिन चीर सबुज होमती अमित कुमार यही सुंदर गीतटी आपण को शुणिला मान से नईर कथा मन पड़ जाऊ बालिका बधुर सुंदर गीत बड़े अच्छे लगते हैं। चलंतु सुनिबा आउ किछि समय पई से नईर प्रेम रे आउ धरे हजि जिबा पड़ी जिबा मजि जिबा।

0: नमस्कार जय जगन्नाथ मु गीतांजलि कहुत
1: आज्ञा नमस्कार गीतांजलि मैडम कौन कह नई सहित आपति कौन संपर्क
0: नई आम संपर्क जो समर वैकेशन समर वैकेशन आम बेले जिते समर वैकेशन हुए आम जमी चातक पर मामू घर प्रति गोटे एमती गोटे मोह था मानते आम समस्ते आपण जेनेसन बोधे बेस भल कि जापर क्या मैंने सब जाऊ आम कहे प्राय समर वैकेशन जी मानते

ख्वाबों के एक सफर में जब फरमाइशें होती हैं पूरी, ख्वाबों के एक सफर में जब फरमाइशें होती हैं पूरी, दिल को मिलता है सुकून और यादें होती हैं और भी गहरी। तबे आपण मानकर फरमाइश को पूर्ण करबा पई आपण मानकर अनुरोध को रक्षा करी कि आपण मानकर मनपसंद रे गीत को प्ले करबा पई जो प्रोग्राम आपण मानकर फेवरेट रेनबो एसएमएस को स्टार्ट करबार समय हे जाई छी। वेलकम बैक अगेन, ट्यून कर छी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को। तबे साथी आपण माने जदी चाहंती आपणकर फरमाइश पठिबा पई शीघ्र शीघ्र हमो को ताले फोन उठान्तु, शीघ्र शीघ्र एसएमएस बॉक्स को जानतु और टाइप करंतु फर्स्ट जे की एफएमआरसी एफएम प्रसिद्ध एफएमआरसी टाइप करी की तापर लिखि दियंतु को गीत सुनिबा पई चाहुचंती, को फिल्म रो को एल्बम रो संगीत कहा को डेडिकेट करिबा पई चाहुचंती एवं ससरे निज ना ठिकाना सहित पठि दियंतु हम नंबर 09495963210 रे। जदि करिबा पई चाहुचंती हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कनेक्ट हो पई चाहुचंती हम सहित व्हाट्सएप रे, तबे नंबर होची 8895254200। तबे साथी नहीं जीवा फर्स्ट फरमाइश आज किए कर देखा सीडीए कटक सेक्टर 13 रु सुरक्षा सहाय सहयोग भवन रु डम्बरुधर

0: कलाकार कार्यक्रम आमरा परवर्ती कार्यक्रम सुनंतु कथा हिंदी कथा चित्र
1: जान लेते हैं उनसे तो भला मेरा बंदर है जो अपना और अपने उस्तादों का पेट भरता है और चैन की जिंदगी बसर करता है तो बचा लो बजाओ मेरे बंदर के नाम पे ताली।

0: दुनिया को तावीज दिया, मगर बंदर ने हमारे लिए क्या किया?
1: क्या किया? बाप ने हमें घर से निकाला,
0: बंद किया किस्मत का ताला,
1: छीन लिया मुंह से निवाला,
0: बंद के बाद बंदर ने पाला
1: बाला।
0: बोला बच्चा बंदर अच्छा के बाप अच्छा।

0: सर्वाइकल कैंसर रक्षा करी थाए एवं आम सरकार एहाको 14 वर्षर झियो मानको पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करी देइछंती मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसिली
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला की
0: ना ना किछ असुविधा हैनी तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो
1: ठीक अछि दीदी
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानको टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार
3: कथारे कथारे अनेक कथा आउ गपरे गपरे आईमा पेढ़ी शुआ शरीर गप गीतरे गीतरे आम हृदय आपण हृदय को छुई जाऊ संगीतर स्वर से स्वर आपण मन भरीज अनेक आशा अनेक विश्वास आपसरी सब दुख अवसाद भूली जा मनर सब जंत्रणा हृदय व्यथा आ मजिजा संगीतर मीठा बास्नारे शुणा किसी कथा किसी गीत आज संगीतमय परिवेश सहित मुझे साथी बंधु जयदेव मु रही हृदय हजेबि मजेबी भिजेबि गीतर वर्षे ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु

आकाशवाणी एफएम दिल से दिल तक चली कार्यक्रम किसी कथा किसी गीत आम कथा से रस रसा फल आंब संपर्क बेदरे देवता मानंकर भोज्य तालिकारे आंब स्थान पाई अनेक धर्म प्रचलित लोकगीत और लोककथार आंब अंगांगी भाव जड़ित हो रही हिंदू मैंने आंब गच्छ को सृष्टिर देवता प्रजापति रूपे ग्रहण करी स्कंद पुराण उल्लेख अछि जे अमृत सन्धान देवता और असुरगण समुद्र मंथन कला बेले समुद्र गर्भर जो किसी वृक्ष उत्पन्न होता सेगुड़ आंब आय वृक्ष पारिजात और बट मत्स्य पुराण वर्णना मध्य विभिन्न प्रकार व्रत पालन आंब गच्छर नाम उल्लेख हो रावण लंकापुर आंब गच्छ को हनुमान भारत आनी शास्त्र वर्णना तो बंधु आपण कौन चाहिए आंब संपर्क भावु था मुझे गीतरी पर आउ किसी आंबर कथा आपण नहीं

सुनसुनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रनबकर दिल से दिल तक कार्यक्रम चली छि किछि कथा किछि गीत हमें चर्चा करछ से रस रसाळ आंब संपर्क रे आंब बा वृक्ष पूजा रा परंपरा आंब गच्छ को पूजा करिवार पर्व होछि बोल अमावस्या पौष मास रो अमावस्या बकुल अमावस्या नवरख्यात एहि तिथि रे 10 अवतार मधुर तृतीय अवतार श्री बराह अवतार ग्रहण करथिले बोली करिथिले स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मांक नाकपुळरु जात होई प्रभु बराह प्रबल प्रतापी राक्षस हिराण्यक्षक वध करी दंताग्ररे पृथ्वी को धारण करथिले श्रीमंदिर बकुल लागि नीति अनुष्ठित होइथाय नीति अवसर में महाप्रभु को स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत बौल गईंठा लागि करा जाए अन्य पक्षे बौल अमावास्या दिन झीव माने प्रिय सांग मानक संगे बौल बसिवार परंपरा रही दिन झीव माने परस्पर को बौल खुआई सबुदिन एक स्वतंत्र संपर्क बांधि हमें बौल बसिवा पर आउ ना न डाक परस्पर को बौल बोली संबोधन करते दिन आंब गच्छ मूल में पूजा कर बौल गईंठा पूजा कर आंब गच्छ को फिंगिले आंब प्रचुर होता है विश्वास रही अर्थात आंब गच्छर प्रारंभ में आंब गच्छर बौल धरले आंब गच्छ को पूजा कर प्रचुर परिमाण रस रसाल आंब फलू आउ ए वर्ष आंब आम प्रचुर पाऊ मन ए वर्ष भी प्रचुर आंब हो ना कौन कहते हाँ आप शुणु गोटे गोटे गीत फेरबी आउ कि कथा धरी आपण निकट को

24 आकाशवाणी एफएम रन बगड़क दिल से दिल तक चली कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत आम कथा होछे आंबक नहीं गीत सुनुछे आपण को मन को रसिला भाई हाँ बंधु आंबक वह कंचा पाचिला अवस्था रे खिया जाय थाए कंचा आंब डेम्फरे उरिसियोल नामक एक रासायनिक पदार्थ थाए जहाँ को लसा कहा जाए यार संस्पर्श आसिले ओठ चर्म जीव जीव क्षतिग्रस्त हो बेले बेले खाओ हो जाए अधिकांश आंब कंचा अवस्था रे खटा स्वाद युक्त होती आंबरे प्रचुर परिमाण खाद्य सार और जीवनिका रही विटामिन ए सी ई छड़ा विटामिन बी सिक्स तथा बी उपादान एवं विटामिन के मध्य रही आंबरे छड़ा आंब रस पॉलीफेनॉल पोटासियम जिंक कैरोटीन एसिड्स कैरोटीन एसिड ओमेगा थ्री स्नेहामल प्राय 70 प्रकार जैव रासायनिक पदार्थ रही रही बीटा कैरोटीन लुटीन अल्फा कैरोटीन इत्यादि एवं कैम्फेरोल गैलिक एसिड कैफिक एसिड क्यूरेटिन टैनिन आदि पॉलीफेनॉल सब रही आंबरे सबुठ गुरुत्वपूर्ण है मगड़िया फेरन नामक एक स्वतंत्र कणिका जहां आंब को सुगंधित करने सहित यह एक स्वतंत्रता प्रदान करें कारोटीनियट कणिका मान उपस्थित परिमाण उपर आंबर हलदिया रंग निर्भर करमती आंबर एत पर उपादान एत परिमाण उपादान जो रही आंब न खाइबा केमती कहतु बंधु

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीतिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो। एही टीका मो झियो मानन को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करी थाए एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानन को पई सरकार

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त
0: तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
1: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
0: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
1: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
0: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: आंब चोपा तथा रसरे बहु औषधीय गुणयुक्त।

0: अरे कविता, भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
4: 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक। एवं समय जाए शुणा कतरी ओडिया कथचित्र गीत।

0: अरे कविता भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरी एक कैंसर जहा को एचपीवी वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमावृत उत्तुंग पर्वतमाला विस्तीर्ण उर्वर समतल भूमि उच्च मालाभूमि दिगंत विस्तारी शुष्क मरुभूमि निविड़ वनराजी मनोहर ह्रद गभीर सागर और महासागर उर्वर उपकूल सुविस्तृत नवी नदी अवबाहिका ये सबको नहीं गढ़ा आम माटीमा भारत। ए माटीर इतिहास जतिके चर्चित यार भूगोल सेतिके सुशोभित यार ऐतिह जतिके परिपूर्ण यार कला साहित्य संस्कृति सेतिके स्वर्णमय ज्ञान गरिमारे ए माटी जतिके विख्यात सेतिके प्रसिद्ध यार वीरत्व साम्राज्य आउ आभिजात्य तेणु ए माटीर कथा ए माटीर वीरंक गाथा को नहीं आरंभ करुचु कार्यक्रम मो देश।